की मेंटल हेल्थ सपोर्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट की टिप्स भी मिलेंगी। पेरेंट्स और बच्चे कुंगथाउ मेथोडिस्ट सोशल सर्विस नाउथाउ कॉक यूथ इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर की विजिट करके कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में भी जानेंगे। और सबसे अच्छी बात, सारी एक्टिविटीज कंप्लीटली फ्री हैं। ज़्यादा जानकारी या इनरोलमेंट के लिए कॉल कीजिए 2552-4211 या व्हाट्सएप कीजिए 9862-3150। ज़रूर आइए और ज्वाइन कीजिए। ओके आते हैं जी हमारे पहले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस इज अनोनिमस एंड गाने का नाम है जी वालियां बाय हर्ष नुसी एंड सर्वजोत। एंजॉय द सॉन्ग।

All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे दूसरे अनाउंसमेंट पर. दिस इज रिसीव रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग. हांगकांग में महिलाओं में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है. रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है. अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और आपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग जरूरी.

करवाइए, ज़रूर करवाइए। बहुत सी महिलाओं जिन्हें HPV वायरस है, जो सर्विकल कैंसर का कारण बनता है, या कैंसर शुरुआती स्टेज में है, उनको कोई लक्षण भी नहीं दिखते। याद रखो, चाहे आपको कोई लक्षण ना हो, HPV वैक्सीन लगा लो, लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो, तब भी रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग करवाने के लिए आप मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, विमेन वेलनेस सैटेलाइट्स, फैमिली डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट या NGOs के पास जा सकती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग ले के लिए कॉल कीजिए 3166-6631। जनवरी 2026 से विमेन वेलनेस सैटेलाइट्स में HPV सेल्फ सैम्पलिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हांगकॉन्ग आइलैंड का नंबर है 2855-333, कालून का नंबर है 2855-1222, न्यू टेरिटरीज का कॉन्टैक्ट नंबर है 2851-1722। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पर जाइए www.cervicalscreening.gov.hk। अपना ख्याल रखो, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस इज रिक्वेस्टेड बाय रूबी एंड दिस इज फॉर साकिब। एंड उन्होंने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो है तू कैंदी सी बाय नोशी एंड जैक नाइट। सो एंजॉय द सॉन्ग।

All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज रिसीव कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग. आज ही कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो. हांगकांग में आंतर का कैंसर बहुत कॉमन कैंसर्स में से एक है. रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको जल्दी पकड़ा जा सकता है और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है. साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाओ. शुरुआती स्टेज में इस कैंसर के कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है. 50 से 75 साल के हांगकांग रेसिडेंट्स जो अभी कोई सिम्टम्स नहीं फील कर रहे, उनके लिए ये स्क्रीनिंग फ्री हो सकती है. अगर रिजल्ट नॉर्मल आए तो हर 2 साल बाद फिर स्क्रीनिंग ज़रूर करवाओ. ज़्यादा जानकारी के लिए www.colonscreen.gov.hk पर भी जा सकते हो. हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना है, रोज़ एक्सरसाइज करो, दिन में 2 बार फ्रूट और 3 बार सब्जी खाओ, अपना वेट हेल्दी रखो, स्मोकिंग और शराब छोड़ दो. बस यही, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, आज ही स्क्रीनिंग करवाओ. ऑलराइट, आते हैं अगले गाने पर. ये मनी सिंह ने गाना रिक्वेस्ट किया है, 52 बार्स बाय करण औजला. एंजॉय द सॉन्ग.

All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर. दिस इज प्रिवेंशन ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा COVID-19 एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस. इस सीजन में अलर्ट रहो, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, COVID-19 और दूसरे सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं. अपनी सफाई और घर परिवार के की हाइजीन का ख्याल रखो. खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक ढक लो. हाथ को लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकेंड्स तक अच्छे से धो दो. अगर तबीयत खराब लगे तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो. गवर्नमेंट का 2025 और 26 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है. हर साल फ्लू का वैक्सीन लगाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर. एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है. COVID-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए. जो है रेजिडेंशियल केयर होम्स में रहने वाले, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के जो क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर लोग जो 6 महीने से ऊपर हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं. ज़्यादा जानकारी के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट देखें www.chp.gov.hk. अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें. ऑलराइटी, बढ़ते हैं हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय सनी सिंह. द नेम ऑफ द सॉन्ग इज ब्लैक बुल बाय अमृत मान. इन्जॉय द सॉन्ग.

0: ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। अब तो सारे गाने आई मीन जो अनाउंसमेंट्स थे वो तो सारे हो गए ख़त्म, तो सीधा गानों में चलते हैं। चार गाने तो ऑलरेडी लग चुके हैं और ये पांचवा गाना, वी गॉट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑन फेसबुक, सो जितने गाने प्ले कर सकेंगे तो उतने करेंगे, ठीक है? जिसके नए गाने प्ले किए तो अगली बार ट्राई कर लेंगे। एनीवेज, हाँ, लगाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि एक किसी यूजर ने कहा था कि लाइक यू नो, हमेशा आप एक अनोनिमस का गाना लगाते हो, हमेशा हमारा गाना नहीं लगाते हो। देखो, हमारे पास काफ़ी सारे जो रिक्वेस्ट आते हैं ना, काफ़ी उनमें से कोई लोग हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो वो अनोनिमस एक बंदा या बंदी नहीं है, वो अनोनिमस अनोनिमस ही है। तो काफ़ी सारे हैं ऐसे जो कि अपना नाम ऑन एयर नहीं बताना चाहते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक इसलिए वो हम अनोनिमस ही रखते हैं। नाम एक है क्योंकि वो अनोनिमस ही है, तो आपको लगता होगा कि लाइक यू नो, सिर्फ एक ही बंदा है जो बार बार वही गाने रिक्वेस्ट कर रहा है। नो, वी हैव फ्यू पीपल रिक्वेस्टिंग सॉन्ग्स अंडर द नेम ऑफ अनोनिमस, ठीक है? तो ये बात एक है। दूसरा, वी ट्राई टू प्ले एज मेनी सॉन्ग्स एज पॉसिबल विद इन 1 आवर दैट वी हैव। तो या अगर मिस होता है तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम जो गाने पिक करते हैं, जो मेरी टीम गाने पिक करती है, वो बेसिकली एक लॉटरी सिस्टम है, ठीक है? उनको वो रैंडमली पिक करते हैं 10-15 गाने हर हफ्ते, तो वो वैसे हम लगा देते हैं, ठीक है? चलो, आई वॉन्ट कीप दिस शॉर्ट, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जस्ट वॉन्ट टू एड्रेस द इशू। बढ़ते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। माजिद जट ने ये गाना रिक्वेस्ट किया है, असी राजपूता, एंड डोंट थिंक ही हैज डेडिकेटेड द सॉन्ग टू एनीवन। तो एनीवेज, एंजॉय द सॉन्ग। दिस इज असी राजपूता बाय रियो सिंह राजपूत। एंजॉय द सॉन्ग।
1: राजपूताना सुपरस्टार, नाम तो सुना ही होगा,
2: रियो सिंह।

ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय FIHK मैसेजेस। हेलो, हाउ आर यू रोमी भाई? आई होप यू डूइंग गुड। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू रोमी भाई, पप्पू वाइज एंड बट साहब एंड फारी वाइज, मिर्जा जुबैर खान, रांझा अंसर एंड गुरु गुरसेवक सिंह फ्रॉम FIHK। थैंक यू। गाने का नाम है जी लेवल बाय सरदार खैरा। थैंक यू ब्रो। All right, enjoy the song. This is Level by Sardar Khera.

0: ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक. आते हैं जी हमारे अगले गाने पर. बट बिफोर वी डू दैट, वी हैव अ कमेंट ऑन फेसबुक बाय यासिर खान. हेलो, प्लीज सेंड माय फ्रेंड अ मैसेज. हमजा, आई मिस यू फ्रॉम यासिर L3C. ओके, दिस इज डन. और बढ़ते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस इज रिक्वेस्टेड बाय अमरे संधू. गाने का नाम है जेड़े छड़गे बाय वीर संधू, डेडिकेटेड टू अमरीका बाई, पंकज, वीर, पठान, अफनान, पंज ग्राई एंड हैरी शूटर. सो एंजॉय द सॉन्ग.
1: अगर तेरे को लगे कि तेरे अंदर वफादारी के कीटाणु मर गए हैं तो मेरे कुत्ते का जूठा खा लेना, कुत्ते का जूठा खा लेना.

All right, guys, आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस इज रिक्वेस्टेड बाय यसीन मोहम्मद एंड द मैसेज इज आई वांट टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग फॉर कमिंग फ्राइडे. ओके, जैकपॉट बाय आर्टिस्ट चीमा वाई, डेडिकेटेड टू चीमा अरसलान, पेंडा अतीक एंड माय ब्रदर चीमा जे फ्रॉम स्टैनली एंड पिक्यूक. Okay, ji, enjoy the song. This is Jackpot by Chima Wai.

All right, guys, welcome back. आते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय सनी सिंह. द नेम ऑफ द सॉन्ग इज कार्टेल बाय चीमा वाई एंड गुर सिद्धू, डेडिकेटेड टू डॉलर सिंह फ्रॉम सनी वकार मनी लामा. मिस यू ब्रो, सी यू सून. ओके जी, एंजॉय द सॉन्ग. दिस इज कार्टेल बाय चीमा वाई एंड गुर सिद्धू.